0: If you're disabled, you have a unique perspective. This is your POV, and it's important. In this ad, a synthetic voice was used to mirror the accessibility tools used by some disabled people. The Election Access Fund provides money for assistive tech like this, recognizing that disabled people often face additional costs when standing as candidates in elections. The fund assists with these costs, so you can take your POV to more places. Find out about the Election Access Fund at elections.nz.
1: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।